की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहा है प्रभु जस मान रहा है और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार न तावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दें ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेडे गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

अजय सरो में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे ते सर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पए मंजूर जिनके स्वामी रत हजूर रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले, कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने आ, मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी, भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हां करो। अठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा, फिर दुगनी मजूरी देन लगा। कहन लगे नहीं जो वचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्यां वेखद्यां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरणा ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

0: नहीं वचन प्रवान करने गुरु पातशाह दिया हाजरिया धरती प्रवान करन भुला चुका खेमा पते बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

तू बेअंत को बिगला जाने, को बिगला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नू हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा ए दिया पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्मपाती बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेखिया सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन ले लो सब है जिन प्रेम की हो सारे जपो न भई जिन प्रेम की हो तिन ही भग पायो।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसने। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनु दुनिया का बेअंत धन बख्श देता। सुदामे नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दी।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना ता मैं है पई मैं मंगा की, हे मालिक मैनू ओ दात दे।

महाराज के दरबार विच तौस सरंदे ते रबाब वजा के इना रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहिब दी ये भेंट है।

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां

लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानता हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, कर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे कर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगता नू छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे।

दासजी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की हुई। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे अमृत सर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हां नूं सतगुरु जानिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हां ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नूं अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भाई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समें विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नूं जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया

ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके, हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे।

प्यार नाल, प्रेम नाल, इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर कंच

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी ओवे चल लग रहे थोड़े कोल हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्हों ने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानी सो सिर की देखाए उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने गया दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लिए तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन में आई हूं संगतों की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरिया लोड़ां। मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो हो भी चाहिए वेखी जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस औगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।